0: You are listening to Radio Sunno 91.7 FM, Qatar's favorite radio station. Favorite radio station.
1: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।

0: 91.7 FM. Qatar's favorite radio station. Radio Suno.
1: अच्छा, तो हम चलते हैं. अच्छा.